0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है स्पेन में संत पापा लियो 14वें की प्रेरित यात्रा पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट।

0: विश्वव्यापी कैथलिक कलीसिया के परम धर्मगुरु संत पापा लियो 14वें ने स्पेन के मैड्रिड शहर में अपनी 3 दिवसीय प्रेरित यात्रा संपन्न कर मंगलवार को बार्सिलोना के लिए प्रस्थान किया। शनिवार 6 जून को रोम से आरंभ हुई संत पापा लियो की स्पानी प्रेरित यात्रा उनकी 4थी विदेश यात्रा है, जिसके दौरान वे मैड्रिड, बार्सिलोना तथा ग्रैंड कैनरी आइलैंड्स और तेनेरिफ का दौरा कर रहे हैं। सोमवार को मैड्रिड में अपने अंतिम और तीसरे दिन संत पापा लियो 14वें ने स्पेन के संसद की ऐतिहासिक भेंट की, यौन दुराचार के शिकार कुछ एक व्यक्तियों के प्रति अपनी निकटता व्यक्त की, आल मुदेना के महागिरजाघर में प्रार्थना की तथा सोमवार संध्या मैड्रिड के स्टेडियम में महाधर्म प्रांत के लगभग 80,000 विश्वासियों को अपना संदेश दिया। स्पेन के सांसदों के समक्ष संत पापा लियो 14वें ने वर्तमान विश्व पर व्याप्त मानव प्रतिष्ठा, आप्रवास, जीवन की रक्षा, पुनर्सशस्त्रीकरण, परिवार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शांति जैसे कुछ जरूरी मुद्दों की चर्चा की। उन्होंने स्पानी सांसदों से कहा कि एक न्यायसंगत समाज के निर्माण के लिए प्रत्येक मनुष्य की अलंघनीय प्रतिष्ठा को पहचानना और उसे मान्यता देने की जरूरत है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आप्रवासियों की दुखद स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि यह देशों की सोच और दुनिया की नैतिक बुनियाद को चुनौती देता है। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि आप्रवासियों और शरणार्थियों की स्थिति में ऐसे प्रत्युत्तर की नितांत आवश्यकता है जो लोगों पर ध्यान देते हुए उन यथार्थ कारणों को दूर करे जो उन्हें अन्यत्र जाने पर मजबूर करते हैं। विश्व में व्याप्त युद्धों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए संत पापा ने कहा कि प्रत्येक युद्ध अंततः एक पराजय है, बातचीत करने की काबिलियत में एक दर्दनाक हार। उन्होंने कहा, हथियारों को कुछ समय के लिए चुप किया जा सकता है, लेकिन वे कभी भी सच्ची और सदा बरकरार रहने वाली शांति स्थापित नहीं कर सकते। विभिन्न मुद्दों पर संत पापा लियो के प्रभाषण के उपरांत संपूर्ण संसद भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, जो लगभग 7 मिनटों तक जारी रही। स्पानी संसद की भेंट के उपरांत संत पापा लियो ने स्पेन के कैथलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन के धर्माधीक्षों से मुलाकात कर उनका आह्वान किया कि वे अपने बीच एकता बनाए रखें, संवाद को बढ़ावा दें, मतभेदों को दूर करें और अपनी देखभाल में सौंपे गए लोगों के सफर में साथ दें। उन्होंने धर्माध्यक्षों को स्मरण दिलाया कि कलीसिया की ताकत उसके संसाधनों की महानता से नहीं, बल्कि उसके सदस्यों की पवित्रता से, उसके पुरोहितों के साथ मिलकर काम करने से तथा उन लोगों की विनम्र और सुनिश्चित वफादारी से आती है जो खुद को पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के सिपुर्द कर देते हैं। सोमवार को अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकालकर संत पापा लियो ने स्पेन में कुछ एक पुरोहितों द्वारा यौन दुराचार के शिकार हुए व्यक्तियों से मुलाकात की तथा उनके प्रति अपनी निकटता व्यक्त की। परम धर्मपीठी प्रेस कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि संत पापा ने इस अवसर पर 6 व्यक्तियों से मुलाकात की और उनके साथ लगभग 1 घंटे तक बातचीत की। स्पेन की अपनी प्रेरित यात्रा के तीसरे दिन मैड्रिड में आल्मुदेना की मरियम को समर्पित महागिरजाघर में सोमवार संध्या एक प्रार्थना सभा के दौरान संत पापा लियो 14वें ने ख्रिस्तानुयायियों से विभाजनकारी दीवारों को गिराने और मेल मिलाप, मैत्री, सद्भाव और शांति निर्माण में योगदान की अपील की। मैड्रिड महाधर्म प्रांत की संरक्षिका आल्मुदेना की मरियम के आगे नतमस्तक होकर संत पापा ने महागिरजाघर में प्रार्थना की और उस दीवार पर विचार किया जो ढह गई थी तथा जिससे पवित्र कुंवारी मरियम की प्रतिमा निकली थी। पवित्र कुंवारी की ओर दृष्टि अभिमुख करने के लिए संत पापा ने सबको आमंत्रित किया तथा उनसे आग्रह किया कि वे अपने विश्वास की गवाही में कभी भी कमजोर न पड़ें। महागिरजाघर स्थित आल्मुदेना की मरियम प्रतिमा की भक्ति सदियों से चली आ रही है और स्पेन की राजधानी के इतिहास और आध्यात्मिक जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। महागिरजाघर में एकत्र श्रद्धालुओं से संत पापा ने कहा कि माँ और उनके लोगों का मिलना इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि एक दीवार गिर गई। इस घटना को ईश्वरीय चमत्कार माना जाता है क्योंकि यह उस रास्ते की ओर इशारा करता है जिसे प्रभु ख्रीस्त अपनी माँ के माध्यम से आज भी विश्वासियों को दिखाते हैं। संत पापा ने कहा कि आलमुदेना की माँ मरियम का संदेश है कि कुछ नया, सुंदर और स्थायी बनाने के लिए हमें दीवारें तोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मौजूदा मुश्किलों से आगे देखने और एक साथ आगे बढ़ने के लिए जरूरी जगह बनती है। उन्होंने ख्रिस्तियों को प्रोत्साहन दिया कि वे अपने विश्वास को सुदृढ़ करें, उदारतापूर्वक अपने विश्वास की गवाही दें तथा शांति और पुनर्मिलन के निर्माता बने। स्पेन की राजधानी मैड्रिड शहर स्थित बर्नाबे स्टेडियम में एकत्र लगभग 80,000 श्रद्धालुओं को सोमवार संध्या संत पापा लियो 14वें ने बपतिस्मा संस्कार, माता कलीसिया से स्थानीय कलीसियाओं की संलग्नता और सुसमाचार प्रचार पर चिंतन किया। उन्होंने कैथलिकों से निवेदन किया कि वे तेजी से बदलते शहर के दिल से बात करने में सक्षम आशा के समस्वर बने।
1: Queridos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes.
2: प्यारे भाई एवं बहनों, शुभ संध्या। यह शाम विश्वास का एक बड़ा भजन बन गई है और मुझे खुशी है कि मैं आपकी आवाज़ में ईश्वर की प्रशंसा कर रहा हूँ और ऐसे खूबसूरत कलीसियाई परिवार के रिश्तों को मजबूत कर रहा हूँ जो बहुध्वनि की कला सीख रहा है, यानी अलग अलग लय में समरूपता। पोप ने कहा, हमारे दिलों को गाना चाहिए, यानी हमें दूसरों के साथ उनके अर्थ को समझते हुए घटनाओं और परिस्थितियों का मतलब निकालना चाहिए। कलीसिया के लिए यह अवसर धर्म विधि के माध्यम से आता है, उन घटनाओं की महान यादगारी में जिन्होंने हमें बचाया। संत पापा ने गाने को जीवन में आवश्यक बताया जो हमें दूसरों के साथ शामिल करता है, संस्कृति को चुनौती देता और उसे खुला एवं लगातार बदलते रहने के लिए कहता है। उन्होंने उपस्थित विश्वासियों से कहा, आप एक धर्म प्रांतीय कलीसिया हैं जो ऐसे लोगों के बीच है जिन्हें संगीत, नृत्य और साथ रहना पसंद है, लेकिन जो झगड़े, हार मानने और कभी कभी निराशा का भी सामना करते हैं। इन परिस्थितियों में सुसमाचार उम्मीद का रास्ता खोल सकता है। आप एक महान यूरोपीय देश की राजधानी में सुसमाचार की गवाही देते हैं जो संस्थान और संगठन की जगह है जहां वर्तमान और भविष्य के लिए जरूरी फैसले किए जाते हैं। यह जगह लाखों पर्यटकों और उन भाई बहनों के लिए भी है जो नए मौकों की तलाश में आते हैं। पोप ने आगे कहा, आपकी खुशी फैलने वाली बन जाएगी अगर आप इसे पल भर की भावना से एक स्थिर जीवन में बदल देंगे, एक गहरी भावना में जो लोगों, दलों और धर्म प्रांतीय समुदाय को नया कर दे। अंत में विभिन्न लोगों के साक्ष्यों को याद करते हुए पोप ने कहा,
1: Las anécdotas que hemos escuchado esta noche nos cuentan.
2: कि आज रात हमने जो कहानियां सुनी वे हमें बताती हैं कि इस कलीसिया में कितना जीवन है। एक व्यक्ति ने यह गवाही दी, मैं बिना किसी शक के कह सकता हूँ कि मैं कलीसिया से, ईश्वर के परिवार से बहुत प्यार करता हूँ जहाँ हम सभी के लिए जगह है। दूसरे ने कहा, मुझे बहुत खुशी और जिम्मेदारी महसूस हुई जब मैं समुदाय का एक अधिक सक्रिय सदस्य बन गया और कलीसिया के बाकी सदस्यों के साथ अपनी खूबियां साझा की। और अन्य लोगों ने कहा, हमारे लिए इन कार्यक्रमों में सेवा करना न सिर्फ मदद करने का एक तरीका है बल्कि हमें मिले सारे प्यार और समर्थन को वापस देने का भी एक माध्यम है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, कलीसिया को देखें, सुसमाचार के संगीत पर गौर करें, उसके जबरदस्त लय को देखें। जब यह दिल तक पहुंचता है तो लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनका खुले बाहों से स्वागत किया गया है। जैसे हमारी बहन जो पेरू से मैड्रिड आई थी, उनके और उनके परिवार की तरह कई लोग शुरू में पास आने से डरते हैं क्योंकि उन्होंने भेदभाव और निराशा के बारे में सुना है। दया भले ही कुछ ही लोगों से आए, बहुतों के डर को दूर कर सकती है। इसलिए संत पापा ने कहा, सबके लिए एक खुली बाइबल की तरह बने, ईश्वर का वचन आपके चेहरों और जीवन में मिले। प्यार सच में एक भाषा है जो सबको घर जैसा महसूस कराता है। धन्यवाद।
1: Muchas gracias.
3: संत पापा लियो 14वें ने स्पेन की अपनी प्रेरितिक यात्रा के चौथे दिन मैड्रिड में स्वयं सेवियों से भेंट की और उनके उदारता भरी सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए ईश्वरीय राज्य का खमीर बनने का संदेश दिया। संत पापा ने सबों का अभिवादन करते हुए कहा, आप एक विशेष धन्यवाद के हकदार हैं, क्योंकि आपने अपनी सेवा और समय दिया है। इससे आपने ईश्वर, कलीसिया और संत पापा के लिए प्रेम से प्रेरित होकर किया है। मैं आप सबों का हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ। आप में से हर किसी ने अपने को दिया है, अपना हृदय, अपने हाथ, विचारों, क्षमताओं और मुस्कानों को। इसके लिए ईश्वर आप सबों को अपनी कृपाओं से भर दे, जिससे सिर्फ वे जानते हैं कैसे। संत पापा ने कहा कि मैं आप सबों के संग एक छोटा चिंतन साझा करना चाहूंगा, जिसे इस रूप में संक्षेपित किया जा सकता है।
4: Los cristianos están llamados a llevar al mundo la levadura de la gratuidad.
3: ख्रिस्तीय अपने में निस्वार्थ के खमीर को विश्वास के संग साझा करने हेतु बुलाए गए हैं। उन्होंने कहा, विगत कुछ दिनों में आपके अनुभव जयंती वर्ष के भाई बहनों के अनुभव के समान रहे, जिन्होंने स्वयं सेवियों के रूप में अपने को दिया। यह ईश्वरीय राज्य के आने की तरह है, विशेषकर एक खास विशेषता, स्वार्थहीनता के कारण। संत पापा ने कहा कि स्वार्थहीनता अपने में एक खमीर की भांति है, जो मानव के नैतिक और आध्यात्मिक आयामों को एक समाज में विकसित करता है, और यह ईश्वर के शहर का एक विशिष्ट गुण है। यह महत्वपूर्ण है कि हम सच्ची मानसिकता का विचार करें और उसके अनुरूप जीवन यापन करें, जो हमें समग्र मानवीय विकास की ओर अग्रसर करता है। इस मानसिकता को हम सुसमाचार में पाते हैं, जो हमें कहता है, यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? संत पापा ने कहा, यीशु ख्रिस्त दुनिया में स्वर्ग राज्य की खमीर लेकर आए। उन्होंने उसे हमारे बीमार मानवता के आटे में अपने बलिदान के अनुरूप लोहू और पानी तथा पवित्र आत्मा की आग से मिलाया, जिससे वे हमें अंदर से चंगाई प्रदान कर सकें। अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के उपरांत उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा उसी पवित्र आत्मा की शक्ति से, जिससे वे दुनिया में उनके प्रेम, न्याय और शांति के राज्य की निशानी और माध्यम बन सकें। यह हमारे लिए सुसमाचार की घोषणा में पूरी होती है, उससे भी बढ़कर एक जीवन के द्वारा, जो सुसमाचार के अनुरूप हमें विचारने और व्यवहार करने में मदद करता है। संत पापा ने कहा, इसकी एक विशेष निशानी उदारता है, जिसे आपने इन दिनों यहाँ मैड्रिड में व्यक्त किया है। इसके लिए आपको धन्यवाद। शायद सांख्यिकी इसकी अभिव्यक्ति नहीं करते, लेकिन हम सभी जानते हैं इन दिनों में शहर का विकास हुआ है, क्योंकि यह ईश्वर के राज्य के निकट आया है। आप सबों को धन्यवाद। क्या यह हमारी योग्यता के परिणाम है? नहीं, ये सारी चीजें उनकी कृपा है। यह हमारे लिए रहस्य है, ईश्वर का प्रेम जो सूर्य और तारों को गतिशील बनाता है, उनके हृदयों को भी प्रभावित करता जिनकी भेंट उनसे हुई है। यीशु ख्रिस्त स्वयं इसे हमारे लिए कहते हैं, लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। संत पापा ने कहा, हम इस मार्ग में आइए निरंतर आगे बढ़ते जाएं, नम्रता और दीनता में, बिना किसी उपधारणा के, लेकिन विश्वास में सुदृढ़ता और उदारता में सेवा भाव से।
5: संत पापा लियो 14वें ने मैड्रिड IFEMA के सभागार में स्वयं सेवियों के दलों से भेंट की और उनके कार्यों के लिए सहृदय धन्यवाद दिया। उसके बाद संत पापा मैड्रिड हवाई अड्डे से आइबेरिया A320 विमान द्वारा सुबह 11:52 पर बार्सिलोना के लिए उड़ान भरे और दोपहर 12:45 पर बार्सिलोना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। यह संत पापा की प्रेरितिक यात्रा का दूसरा पड़ाव है। स्थानीय अधिकारियों और बार्सिलोना महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल जोन जोस ओमेला तथा दो बच्चों ने फूल गुच्छा देकर संत पापा का स्वागत किया। इसके बाद संत पापा कार से दोपहर की प्रार्थना के लिए बार्सिलोना के पवित्र क्रूस और संत यूलालिया महागिरजाघर पहुंचे। वहां संत पापा का स्वागत खुशी से झूमती भीड़ ने किया। संत पापा लियो 14वें गिरजाघर के अंदर पवित्र संस्कार के सामने कुछ देर प्रार्थना करने के लिए बगल के चैपल में प्रवेश किया और फिर जब गायक मंडली ने शुरुआती भजन गाया तो वे बीच वाले नैव में चले गए। प्रार्थना के दौरान अपने प्रवचन में संत पापा ने इस महागिरजाघर में दोपहर की प्रार्थना के साथ बार्सिलोना में अपनी प्रेरितिक यात्रा शुरू करने की खुशी जाहिर की। संत पापा ने कहा कि द्वितीय वाटिकन महासभा ने डिवाइन ऑफिस दैनिक प्रार्थना को दुल्हन की आवाज जो खुद अपने दूल्हे को संबोधित करती है और वह प्रार्थना जो क्रिस्त खुद अपने शरीर के साथ पिता को संबोधित करते हैं के रूप में परिभाषित किया। आज का पाठ इस बात पर भी जोर देता है कि एक ही आत्मा में हम सब एक शरीर में बपतिस्मा लिए हैं, इसलिए हम दुल्हन और शरीर इन दो छवियों पर चिंतन करें। संत पापा ने कहा, दुल्हन हमें याद दिलाती है कि कलीसिया और खासकर यह सभा जो उपहारों और करिश्मों और हर व्यक्ति की कहानी की विविधता से भरपूर है, सबसे बढ़कर एक प्यारी दुल्हन है। ईश्वर ने चाहा कि आप यहाँ रहे और आप में एवं आपके एक साथ होने में वे एक अनोखी और पवित्र सुंदरता और अच्छाई से प्यार करते हैं। इसी एहसास के साथ आप सभी, चाहे पुरोहित गण हो या विश्वासी, सभी मसीह के नक्शे कदम पर जीवन की पूर्णता की ओर साथ चलने के अपने इरादे फिर से दोहराएं। संत पापा ने कहा कि पाठ के अनुसार चिंतन के लिए दूसरी छवि है शरीर। हम सब ख्रीस्त के साथ एक शरीर हैं और जैसे कि एक शरीर में कुछ ज्यादा मजबूत होते हैं और कुछ कमजोर, इसके अलावा कलीसिया के कुछ सदस्य दिखाई देते हैं, ऐसे काम करते हैं जो बाहरी दुनिया को साफ दिखते हैं, वहीं दूसरे छिपे हुए हैं, अंदर से काम करते हैं, कुछ मामलों में बिना रुके और बिना किसी के ध्यान दिए जरूरी काम करते रहते हैं। इतनी अलग अलग तरह के बातों के बावजूद संत पापा ने विश्वासियों को एकता को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया। हम मजबूत हैं, लेकिन हम एक हैं। हम एक हैं क्योंकि हम एक ही आत्मा से प्रेरित हैं। एक ऐसी दुनिया में जो युद्धों और बंटवारे से जूझ रही है और ऐसे समाज में जो तेजी से बंटता और अलग थलग होता जा रहा है, संत पापा ने ख्रिस्तियों से शहीद बनने की गुजारिश की, यानी उन्होंने समझाया एकता, स्वागत, मेलजोल और शांति के गवाह और नबी भले ही त्याग और बलिदान की कीमत पर क्यों ना हो। प्रार्थना समाप्त करने के बाद संत पापा बार्सिलोना के धर्माध्यक्षीय निवास के लिए रवाना हुए। संत पापा का अगला कार्यक्रम लुइस कंपनी ओलंपिक स्टेडियम में रात्रि 8 बजे जागरण प्रार्थना की अध्यक्षता करना है। वहां पहुंचने पर संत पापा मोबाइल में विश्वासियों के बीच दौरा करेंगे और उनका अभिवादन करेंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है स्पेन में संत पापा लियो 14वें की प्रेरित यात्रा पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट।

0: विश्वव्यापी कैथलिक कलीसिया के परम धर्मगुरु संत पापा लियो 14वें ने स्पेन के मैड्रिड शहर में अपनी 3 दिवसीय प्रेरितिक यात्रा संपन्न कर मंगलवार को बार्सिलोना के लिए प्रस्थान किया। शनिवार 6 जून को रोम से आरंभ हुई संत पापा लियो की स्पानी प्रेरितिक यात्रा उनकी 4थी विदेश यात्रा है, जिसके दौरान वे मैड्रिड, बार्सिलोना तथा ग्रैंड कैनरी आइलैंड्स और तेनेरीफ का दौरा कर रहे हैं। सोमवार को मैड्रिड में अपने अंतिम और तीसरे दिन संत पापा लियो 14वें ने स्पेन के संसद की ऐतिहासिक भेंट की, यौन दुराचार के शिकार कुछ एक व्यक्तियों के प्रति अपनी निकटता व्यक्त की, आल मुदेना के महागिरजाघर में प्रार्थना की तथा सोमवार संध्या मैड्रिड के स्टेडियम में महाधर्म प्रांत के लगभग 80,000 विश्वासियों को अपना संदेश दिया। स्पेन के सांसदों के समक्ष संत पापा लियो 14वें ने वर्तमान विश्व पर व्याप्त मानव प्रतिष्ठा, आप्रवास, जीवन की रक्षा, पुनर्सशस्त्रीकरण, परिवार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शांति जैसे कुछ जरूरी मुद्दों की चर्चा की। उन्होंने स्पानी सांसदों से कहा कि एक न्याय संगत समाज के निर्माण के लिए प्रत्येक मनुष्य की अलंघनीय प्रतिष्ठा को पहचानना और उसे मान्यता देने की जरूरत है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आप्रवासियों की दुखद स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि यह देशों की सोच और दुनिया की नैतिक बुनियाद को चुनौती देता है। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि आप्रवासियों और शरणार्थियों की स्थिति में ऐसे प्रत्युत्तर की नितांत आवश्यकता है जो लोगों पर ध्यान देते हुए उन यथार्थ कारणों को दूर करे जो उन्हें अन्यत्र जाने पर मजबूर करते हैं। विश्व में व्याप्त युद्धों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए संत पापा ने कहा कि प्रत्येक युद्ध अंततः एक पराजय है, बातचीत करने की काबिलियत में एक दर्दनाक हार। उन्होंने कहा, हथियारों को कुछ समय के लिए चुप किया जा सकता है, लेकिन वे कभी भी सच्ची और सदा बरकरार रहने वाली शांति स्थापित नहीं कर सकते। विभिन्न मुद्दों पर संत पापा लियो के प्रभाषण के उपरांत संपूर्ण संसद भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, जो लगभग 7 मिनटों तक जारी रही। स्पानी संसद की भेंट के उपरांत संत पापा लियो ने स्पेन के कैथलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन के धर्माधीक्षों से मुलाकात कर उनका आह्वान किया कि वे अपने बीच एकता बनाए रखें, संवाद को बढ़ावा दें, मतभेदों को दूर करें और अपनी देखभाल में सौंपे गए लोगों के सफर में साथ दें। उन्होंने धर्माध्यक्षों को स्मरण दिलाया कि कलीसिया की ताकत उसके संसाधनों की महानता से नहीं, बल्कि उसके सदस्यों की पवित्रता से, उसके पुरोहितों के साथ मिलकर काम करने से तथा उन लोगों की विनम्र और सुनिश्चित वफादारी से आती है जो खुद को पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के सिपुर्द कर देते हैं। सोमवार को अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकालकर संत पापा लियो ने स्पेन में कुछ एक पुरोहितों द्वारा यौन दुराचार के शिकार हुए व्यक्तियों से मुलाकात की तथा उनके प्रति अपनी निकटता व्यक्त की। परम धर्म पीठी प्रेस कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि संत पापा ने इस अवसर पर 6 व्यक्तियों से मुलाकात की और उनके साथ लगभग 1 घंटे तक बातचीत की। स्पेन की अपनी प्रेरित यात्रा के तीसरे दिन मैड्रिड में आल्मुदेना की मरियम को समर्पित महागिरजाघर में सोमवार संध्या एक प्रार्थना सभा के दौरान संत पापा लियो 14वें ने ख्रिस्तानुयायियों से विभाजनकारी दीवारों को गिराने और मेल मिलाप, मैत्री, सद्भाव और शांति निर्माण में योगदान की अपील की। मैड्रिड महाधर्म प्रांत की संरक्षिका आल्मुदेना की मरियम के आगे नतमस्तक होकर संत पापा ने महागिरजाघर में प्रार्थना की और उस दीवार पर विचार किया जो ढह गई थी तथा जिससे पवित्र कुंवारी मरियम की प्रतिमा निकली थी। पवित्र कुंवारी की ओर दृष्टि अभिमुख करने के लिए संत पापा ने सबको आमंत्रित किया तथा उनसे आग्रह किया कि वे अपने विश्वास की गवाही में कभी भी कमजोर न पड़ें। महागिरजाघर स्थित आल्मुदेना की मरियम प्रतिमा की भक्ति सदियों से चली आ रही है और स्पेन की राजधानी के इतिहास और आध्यात्मिक जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। महागिरजाघर में एकत्र श्रद्धालुओं से संत पापा ने कहा कि माँ और उनके लोगों का मिलना इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि एक दीवार गिर गई। इस घटना को ईश्वरीय चमत्कार माना जाता है क्योंकि यह उस रास्ते की ओर इशारा करता है जिसे प्रभु ख्रीस्त अपनी माँ के माध्यम से आज भी विश्वासियों को दिखाते हैं। संत पापा ने कहा कि आलमुदेना की माँ मरियम का संदेश है कि कुछ नया, सुंदर और स्थायी बनाने के लिए हमें दीवारें तोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मौजूदा मुश्किलों से आगे देखने और एक साथ आगे बढ़ने के लिए जरूरी जगह बनती है। उन्होंने ख्रिस्तियों को प्रोत्साहन दिया कि वे अपने विश्वास को सुदृढ़ करें, उदारतापूर्वक अपने विश्वास की गवाही दें तथा शांति और पुनर्मिलन के निर्माता बने। स्पेन की राजधानी मैड्रिड शहर स्थित बर्नाबे स्टेडियम में एकत्र लगभग 80,000 श्रद्धालुओं को सोमवार संध्या संत पापा लियो 14वें ने बपतिस्मा संस्कार, माता कलीसिया से स्थानीय कलीसियाओं की संलग्नता और सुसमाचार प्रचार पर चिंतन किया। उन्होंने कैथलिकों से निवेदन किया कि वे तेजी से बदलते शहर के दिल से बात करने में सक्षम आशा के समस्वर बने।
1: Queridos hermanos, queridas hermanas. Buenas tardes.
2: प्यारे भाई एवं बहनों, शुभ संध्या। यह शाम विश्वास का एक बड़ा भजन बन गई है और मुझे खुशी है कि मैं आपकी आवाज में ईश्वर की प्रशंसा कर रहा हूँ और ऐसे खूबसूरत कलीसियाई परिवार के रिश्तों को मजबूत कर रहा हूँ जो बहुध्वनि की कला सीख रहा है, यानी अलग अलग लय में समरूपता। पोप ने कहा, हमारे दिलों को गाना चाहिए, यानी हमें दूसरों के साथ उनके अर्थ को समझते हुए घटनाओं और परिस्थितियों का मतलब निकालना चाहिए। कलीसिया के लिए यह अवसर धर्म विधि के माध्यम से आता है, उन घटनाओं की महान यादगारी में जिन्होंने हमें बचाया। संत पापा ने गाने को जीवन में आवश्यक बताया जो हमें दूसरों के साथ शामिल करता है, संस्कृति को चुनौती देता और उसे खुला एवं लगातार बदलते रहने के लिए कहता है। उन्होंने उपस्थित विश्वासियों से कहा, आप एक धर्म प्रांतीय कलीसिया हैं जो ऐसे लोगों के बीच है जिन्हें संगीत, नृत्य और साथ रहना पसंद है, लेकिन जो झगड़े, हार मानने और कभी कभी निराशा का भी सामना करते हैं। इन परिस्थितियों में सुसमाचार उम्मीद का रास्ता खोल सकता है। आप एक महान यूरोपीय देश की राजधानी में सुसमाचार की गवाही देते हैं जो संस्थान और संगठन की जगह है जहां वर्तमान और भविष्य के लिए जरूरी फैसले किए जाते हैं। यह जगह लाखों पर्यटकों और उन भाई बहनों के लिए भी है जो नए मौकों की तलाश में आते हैं। पोप ने आगे कहा, आपकी खुशी फैलने वाली बन जाएगी अगर आप इसे पल भर की भावना से एक स्थिर जीवन में बदल देंगे, एक गहरी भावना में जो लोगों, दलों और धर्म प्रांतीय समुदाय को नया कर दे। अंत में विभिन्न लोगों के साक्ष्यों को याद करते हुए पोप ने कहा,
1: Las anécdotas que hemos escuchado esta noche nos cuentan.
2: कि आज रात हमने जो कहानियां सुनी वे हमें बताती हैं कि इस कलीसिया में कितना जीवन है। एक व्यक्ति ने यह गवाही दी, मैं बिना किसी शक के कह सकता हूँ कि मैं कलीसिया से, ईश्वर के परिवार से बहुत प्यार करता हूँ जहाँ हम सभी के लिए जगह है। दूसरे ने कहा, मुझे बहुत

0: क्योंकि उन्होंने भेदभाव और निराशा के बारे में सुना है। दया भले ही कुछ ही लोगों से आए, बहुत उनके डर को दूर कर सकती है। इसलिए संत पापा ने कहा, सबके लिए एक खुली बाइबल की तरह बने, ईश्वर का वचन आपके चेहरों और जीवन में मिले। प्यार सच में एक भाषा है जो सबको घर जैसा महसूस कराता है। धन्यवाद।
1: Muchas gracias.
2: संत पापा लियो 14वें ने स्पेन की अपनी प्रेरितिक यात्रा के चौथे दिन मैड्रिड में स्वयं सेवियों से भेंट की और उनके उदारता भरी सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए ईश्वरीय राज्य का खमीर बनने का संदेश दिया। संत पापा ने सबों का अभिवादन करते हुए कहा, आप एक विशेष धन्यवाद के हकदार हैं, क्योंकि आपने अपनी सेवा और समय दिया है। इससे आपने ईश्वर, कलिसिया और संत पापा के लिए प्रेम से प्रेरित होकर किया है। मैं आप सबों का हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ। आप में से हर किसी ने अपने को दिया है, अपना हृदय, अपने हाथ, विचारों, क्षमताओं और मुस्कानों को। इसके लिए ईश्वर आप सबों को अपनी कृपाओं से भर दे, जिससे सिर्फ वे जानते हैं कैसे। संत पापा ने कहा कि मैं आप सबों के संग एक छोटा चिंतन साझा करना चाहूंगा, जिसे इस रूप में संक्षेपित किया जा सकता है।
1: Los cristianos están llamados a llevar al mundo la levadura de la gratuidad.
2: ख्रिस्तीय अपने में निस्वार्थ के खमीर को विश्वास के संग साझा करने हेतु बुलाए गए हैं। उन्होंने कहा, विगत कुछ दिनों में आपके अनुभव जयंती वर्ष के भाई बहनों के अनुभव के समान रहे, जिन्होंने स्वयं सेवियों के रूप में अपने को दिया। यह ईश्वरीय राज्य के आने की तरह है, विशेषकर एक खास विशेषता, स्वार्थहीनता के कारण। संत पापा ने कहा कि स्वार्थहीनता अपने में एक खमीर की भांति है, जो मानव के नैतिक और आध्यात्मिक आयामों को एक समाज में विकसित करता है, और यह ईश्वर के शहर का एक विशिष्ट गुण है। यह महत्वपूर्ण है कि हम सच्ची मानसिकता का विचार करें और उसके अनुरूप जीवन यापन करें, जो हमें समग्र मानवीय विकास की ओर अग्रसर करता है। इस मानसिकता को हम सुसमाचार में पाते हैं, जो हमें कहता है, यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? संत पापा ने कहा, यीशु ख्रिस्त दुनिया में स्वर्ग राज्य की खमीर लेकर आए। उन्होंने उसे हमारे बीमार मानवता के आटे में अपने बलिदान के अनुरूप लोहू और पानी तथा पवित्र आत्मा की आग से मिलाया, जिससे वे हमें अंदर से चंगाई प्रदान कर सकें। अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के उपरांत उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा उसी पवित्र आत्मा की शक्ति से, जिससे वे दुनिया में उनके प्रेम, न्याय और शांति के राज्य की निशानी और माध्यम बन सकें। यह हमारे लिए सुसमाचार की घोषणा में पूरी होती है, उससे भी बढ़कर एक जीवन के द्वारा जो सुसमाचार के अनुरूप हमें विचारने और व्यवहार करने में मदद करता है। संत पापा ने कहा, इसकी एक विशेष निशानी उदारता है, जिसे आपने इन दिनों यहाँ मैड्रिड में व्यक्त किया है। इसके लिए आपको धन्यवाद। शायद सांख्यिकी इसकी अभिव्यक्ति नहीं करते, लेकिन हम सभी जानते हैं इन दिनों में शहर का विकास हुआ है, क्योंकि यह ईश्वर के राज्य के निकट आया है। आप सबों को धन्यवाद। क्या यह हमारी योग्यता के परिणाम है? नहीं, ये सारी चीजें उनकी कृपा हैं। यह हमारे लिए रहस्य है, ईश्वर का प्रेम जो सूर्य और तारों को गतिशील बनाता है, उनके हृदयों को भी प्रभावित करता जिनकी भेंट उनसे हुई है। यीशु ख्रिस्त स्वयं इसे हमारे लिए कहते हैं, लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। संत पापा ने कहा, हम इस मार्ग में आइए निरंतर आगे बढ़ते जाएं, नम्रता और दीनता में, बिना किसी उपधारणा के, लेकिन विश्वास में सुदृढ़ता और उदारता में सेवा भाव से।
3: संत पापा लियो 14वें ने मैड्रिड IFEMA

के सभागार में स्वयंसेवियों के दलों से भेंट की और उनके कार्यों के लिए सहृदय धन्यवाद दिया। उसके बाद संत पापा मैड्रिड हवाई अड्डे से आइबेरिया A320 विमान द्वारा सुबह 11:52 पर बार्सिलोना के लिए उड़ान भरे और दोपहर 12:45 पर बार्सिलोना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। यह संत पापा की प्रेरितिक यात्रा का दूसरा पड़ाव है। स्थानीय अधिकारियों और बार्सिलोना महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल जोन जोस ओमेला तथा दो बच्चों ने फूल गुच्छा देकर संत पापा का स्वागत किया। इसके बाद संत पापा कार से दोपहर की प्रार्थना के लिए बार्सिलोना के पवित्र क्रूस और संत यूलालिया महागिरजाघर पहुँचे। वहां संत पापा का स्वागत खुशी से झूमती भीड़ ने किया। संत पापा लियो 14वें गिरजाघर के अंदर पवित्र संस्कार के सामने कुछ देर प्रार्थना करने के लिए बगल के चैपल में प्रवेश किया और फिर जब गायक मंडली ने शुरुआती भजन गाया तो वे बीच वाले नैव में चले गए। प्रार्थना के दौरान अपने प्रवचन में संत पापा ने इस महागिरजाघर में दोपहर की प्रार्थना के साथ बार्सिलोना में अपनी प्रेरितिक यात्रा शुरू करने की खुशी जाहिर की। संत पापा ने कहा कि द्वितीय वाटिकन महासभा ने डिवाइन ऑफिस दैनिक प्रार्थना को दुल्हन की आवाज जो खुद अपने दूल्हे को संबोधित करती है और वह प्रार्थना जो क्रिस्त खुद अपने शरीर के साथ पिता को संबोधित करते हैं के रूप में परिभाषित किया। आज का पाठ इस बात पर भी जोर देता है कि एक ही आत्मा में हम सब एक शरीर में बपतिस्मा लिए हैं, इसलिए हम दुल्हन और शरीर इन दो छवियों पर चिंतन करें। संत पापा ने कहा, दुल्हन हमें याद दिलाती है कि कलीसिया और खासकर यह सभा जो उपहारों और करिश्मों और हर व्यक्ति की कहानी की विविधता से भरपूर है, सबसे बढ़कर एक प्यारी दुल्हन है। ईश्वर ने चाहा कि आप यहाँ रहे और आप में एवं आपके एक साथ होने में वे एक अनोखी और पवित्र सुंदरता और अच्छाई से प्यार करते हैं। इसी एहसास के साथ आप सभी, चाहे पुरोहितगण हो या विश्वासी, सभी मसीह के नक्शे कदम पर जीवन की पूर्णता की ओर साथ चलने के अपने इरादे फिर से दोहराएं। संत पापा ने कहा कि पाठ के अनुसार चिंतन के लिए दूसरी छवि है शरीर। हम सब ख्रीस्त के साथ एक शरीर हैं और जैसे कि एक शरीर में कुछ ज्यादा मजबूत होते हैं और कुछ कमजोर, इसके अलावा कलीसिया के कुछ सदस्य दिखाई देते हैं, ऐसे काम करते हैं जो बाहरी दुनिया को साफ दिखते हैं, वहीं दूसरे छिपे हुए हैं, अंदर से काम करते हैं, कुछ मामलों में बिना रुके और बिना किसी के ध्यान दिए जरूरी काम करते रहते हैं। इतनी अलग अलग तरह के बातों के बावजूद संत पापा ने विश्वासियों को एकता को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया। हम मजबूत हैं, लेकिन हम एक हैं। हम एक हैं क्योंकि हम एक ही आत्मा से प्रेरित हैं। एक ऐसी दुनिया में जो युद्धों और बंटवारे से जूझ रही है और ऐसे समाज में जो तेजी से बंटता और अलग थलग होता जा रहा है, संत पापा ने ख्रिस्तियों से शहीद बनने की गुजारिश की, यानी उन्होंने समझाया एकता, स्वागत, मेलजोल और शांति के गवाह और नबी भले ही त्याग और बलिदान की कीमत पर क्यों ना हो। प्रार्थना समाप्त करने के बाद संत पापा बार्सिलोना के धर्माध्यक्षीय निवास के लिए रवाना हुए। संत पापा का अगला कार्यक्रम लुइस कंपनी ओलंपिक स्टेडियम में रात्रि 8:00 जागरण प्रार्थना की अध्यक्षता करना है। वहां पहुंचने पर संत पापा पापा मोबाइल में विश्वासियों के बीच दौरा करेंगे और उनका अभिवादन करेंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनते।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: महिमा का पहला भेद, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठते हैं,
3: मतलब हम विश्वास में दृढ़ रहें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: महिमा का दूसरा भेद, प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित होते हैं,
3: मतलब हम ईश्वर को दिन दिन अधिक प्यार करें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का तीसरा भेद पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है,
2: मतलब हम अपने पड़ोसियों को प्यार कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का चौथा भेद, माता मरियम स्वर्ग में उठा रखी जाती है,
2: मतलब हम अपने कर्तव्य काम ठीक से कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का पांचवा भेद, माता मरियम स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है।
2: मतलब हमारे बिछुड़े भाई बहने असल धर्म में फिर लौट सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

प्यारे मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा लियो 14वें के स्पेन की प्रेरिती की यात्रा का संक्षिप्त रिपोर्ट।

0: स्पेन की राजधानी में अंतिम कार्यक्रम में संत पापा लियो 14वें ने मैड्रिड में सुबह उन स्वयंसेवकों से मुलाकात की जिन्होंने दूसरों को संत पापा की यात्रा को सही मायने में जीने में मदद करने के लिए अपना समय दिया। संत पापा ने उनका दिल से शुक्रिया अदा किया। इसके बाद संत पापा लियो 14वें अपनी प्रेरितिक यात्रा के दूसरे पड़ाव बार्सिलोना पहुँचे। हवाई अड्डे से संत पापा कार द्वारा दोपहर की प्रार्थना के लिए बार्सिलोना के पवित्र क्रूस और संत यूलालिया महागिरजाघर पहुँचे। सड़कों पर भीड़ से मिलने के बाद उन्होंने दोपहर की प्रार्थना की। भाषाओं के अपने ज्ञान और प्यार का इस्तेमाल करते हुए संत पापा ने कतालान और स्पानी भाषा में अपना प्रवचन दिया और सभी को दुल्हन और शरीर की छवि पर सोचने के लिए आमंत्रित किया। बार्सिलोना में अपनी पहली शाम को संत पापा लियो 14वें ने लुइस कंपनीज ओलंपिक स्टेडियम में युवाओं से मुलाकात की और तीन गवाही सुनी जिनमें हृदय परिवर्तन, मानसिक स्वास्थ्य, हिंसा और दुख जैसे विषयों पर बातें हुई। फिर संत पापा ने उनमें से हर एक को जवाब देने के लिए समय निकाला।
1: संत पापा लियो ने अपने संदेश में कहा, निकोदेमुस की भांति हम भी रात्रि के यात्री हैं। यह सुसमाचार हमें अपने जीवन की यात्रा के बारे में एक संदेश देता है। हमारी यात्रा, हमारी चाहतें और सब कुछ जो हमारा है और जिनका अनुभव हम रोज दिन करते हैं, हमारी खुशी और पराजय, इच्छाएं और योजनाएं, हमारे जीवन की खोज अभिव्यक्तियां हैं। हम प्रेम के लिए भिक्षु हैं। हम सचमुच इसके भूखे और प्यासे हैं। हम एक गहरे अर्थ की खोज करते हैं जो हमें पोषित, प्रेरित करता और हमें अपने जीवन के रहस्य को समझने में मदद करता है। जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, हर एक छोटे कदम में हम अपने को अपने जीवन की छाया भरी परिस्थिति से संलग्न करने को कहे जाते हैं। हम पूर्ण सत्य की कमी को पाते हैं। हम स्वयं अपने जीवन के रहस्य को पूरी तरह नहीं समझते हैं या दूसरों के लिए अपनी सच्चाई पहचानने को। हम अपने चारों ओर बने रहने वाली छिपी सच्चाई को पहचानने में सफल नहीं होते हैं और वे घटनाएं जो हमारे आंखों के सामने घटती हैं। हम एक ज्योति की खोज करते हैं जो हमारा मार्ग प्रज्वलित करती है, संत पापा ने कहा। लेकिन निकोदेमुस भी हमें विश्वास की राह के बारे में कहते हैं। यह वह पथ नहीं है जो मानवीय जीवन के अस्तित्व के समानांतर चलता हो, बल्कि ये दोनों मार्ग अपने में उलझे हुए हैं। सुसमाचार में जैसा हमने सुना, ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और उसमें वे सदा के लिए हमारे शरीर से जुड़ गए। वे सदैव पिता और हमारे संग हैं। इस भांति हमारे जीवन का रहस्य ज्योति का एक दिन की शुरुआत करती है। जहाँ हम रहते और जो कुछ करते हैं, हम ईश्वर की उपस्थिति और उनके अनंत आलिंगन में रहते हैं। हमारा जीवन ख्रिस्त के संग ईश्वर में गुप्त है। फिर भी कभी कभी हम विश्वास के अंधकार का अनुभव करते हैं, विश्वास की थकान को, आत्मा में थकान को, असफलता के कटुपन को और अपनी मांगों के अनुरूप खरा न उतरने के भय को, संत पापा ने कहा। प्रिय भाइयों एवं बहनों, निकोदेमुस हमें इस बात की शिक्षा देते हैं कि ये सभी रातें जो हमारे जीवन में, विश्वास की यात्रा में और हमारे इतिहास में जहां हम निवास करते हैं, एक आशीर्वाद की घड़ी, एक पुनः जन्म लेने, एक गर्भ में प्रवेश करने का पल होता है जो सदैव हमें एक नया जीवन प्रदान करता है। ये रातें हमें नंगा करती और हमें वहां ले आती हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं। वे हमारे मानवीय और धार्मिक मुखौटे जिसे हम दिन में पहनते हैं ताकि कोई हमें ना पहचाने, असलियत से अलग दिखा सके। वे हमें खुले रूप में प्रस्तुत करती हैं जहां हम अपनी ज्योति और अपने छाया को प्रकट करते हैं। ये रातें हम में नम्रता को लाती हैं जिससे हम सच्चाई को अपने में देखते हैं। वे हमें इस सोच से परे ले जाती हैं कि हमारी यात्रा पहले ही पूरी हो चुकी है और हम आगे बढ़ रहे हैं, मानो कि हमें हर चीज, हर कोई और यहाँ तक कि ईश्वर के बारे में भी एक स्पष्ट समझ रखते हैं। एक खालीपन जो रात के द्वारा उत्पन्न होता है। जब यह दुख या असंतोष, भ्रम या अविश्वास के रूप में होता है, हमारे लिए एक नए जीवन को प्राप्त करने का अवसर होता है, जहां हम परिवर्तन और नवीन होने, ऊपर से पुनः जन्म लेने को कहे जाते हैं, जैसे यीशु निकोदेमुस से कहते हैं। वास्तव में ईश्वर दुनिया के पाप और उसकी बेवफाई की रात का न्याय करने के लिए नहीं आए, बल्कि दुनिया को अनंत जीवन देने हेतु, उसे बचाने हेतु ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। यही कारण है हम सभी रातों को दोष नहीं देने को कहे जाते हैं, ना ही अपने जीवन की रातों को, कलिसिया को, और ना ही हमारे समाज के इर्द गिर्द स्थितियों को। इसके बदले हमें रात में यात्रा करने को कहा जाता है, ईश्वर से निरंतर सवाल करने का और अपने को पवित्र आत्मा के लिए खोलने का, जैसे कि निकोदेमुस ने किया। हम रात का स्वागत करें एक असफलता के निशानी स्वरूप नहीं, लेकिन एक नए जीवन की शुरुआत के रूप में। संत पापा ने कहा कि जैसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन पर चिंतन करते हैं और साथ ही रातों की हमारी यात्रा एक कलिसिया के रूप में और स्पेन के शहरों में, इसकी पुरानी और नई निर्धनता में, इसके समाज और संस्कृति में, हम अपने को पूछ सकते हैं, वे कौन सी रातें हैं जिनसे हम होकर गुजरते हैं, वे हमें क्या कहती हैं, हम कैसे उन पर प्रवेश करते हैं और नम्रता से उन्हें देखते हैं, बिना पूर्व ग्रह के, उस सच्चाई से जैसे कि हम हैं। हम अपने में क्या परिवर्तन करने को बुलाए जाते हैं, हम कहाँ अपनी नवीनता की खोज करते हैं, हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं। यहाँ तक कि रात्रि के हृदय में हमारा खोजना, सवाल करना, ईश्वर से और एक दूसरे से वार्ता करना हम ना छोड़ें। आइए हम उस विश्वास के साथ चलें जो हमारे अलग अलग विचारों और समझ में तालमेल बैठाता है, ताकि हम उस सच्चाई की तलाश कर सकें जो हमें सबकी भलाई की ओर ले जाएगी। इस भांति यह देश सबों का स्वागत करने का एक स्थल बनेगा, जहां हर किसी की मानवता का सम्मान किया जाता और हर किसी को प्रेम किया जाता है, चाहे वह कोई भी हो। हम अपने को पवित्र आत्मा के लिए खोलें, निकोदेमुस की भांति ईश्वर को खोजें और उनके सुसमाचार की ज्योति का स्वागत करें, इस निश्चितता में कि हम अपने अंदर एक नए जीवन का अनुभव करेंगे, एक उपस्थिति जो हमें आशीष से भरती है, एक मुफ्त प्रेम जो हमें अंधकार से ज्योति में प्रवेश करने को मदद करता है, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते कि कोई भी चीज खो जाए, और अभी भी वे हमें अनंत जीवन प्रदान करने की चाह रखते हैं और हमें उस खुशी की ओर अग्रसर करना चाहते हैं जो कभी खत्म नहीं होती है। कुमारी मरियम की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर हमें अपने को खुला होने और पवित्र आत्मा की वायु में झकझोरे जाने की कृपा प्रदान करें।
0: बार्सिलोना में बुधवार को अपने कार्यक्रमों की शुरुआत संत पापा लियो 14वें ने बार्सिलोना में ब्रियेंस जेल के कैदियों और स्वयंसेवकों से मुलाकात करते हुए की। यह जेल 1991 में खोला गया है। शुरू में यह जगह सिर्फ पुरुष कैदियों के लिए थी, लेकिन 1993 में उसी परिसर में महिला कैदियों के लिए एक नया सेंटर खोला गया। संत पापा लियो करीब 11:15 बजे जेल पहुँचे, जहां उनका स्वागत जेल के डायरेक्टर ने किया। वे दोनों सभागार की ओर बढ़े, जहां 3 चैपलिन, कैदियों का एक दल और स्वयंसेवकों का एक दल मौजूद था। जेल निदेशक के स्वागत भाषण, एक चैपलिन और 2 महिला कैदी के साक्ष्य सुनने के बाद संत पापा लियो 14वें ने उन्हें संबोधित किया।
2: प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी के हार्दिक स्वागत के लिए धन्यवाद। मोंटसे और जोसफिना ने जो साक्ष्य हमारे साथ साझा किया, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं फादर जीसस के शब्दों की भी तारीफ करता हूँ जो संत फेलियो डे लोब्रेगेट धर्म प्रांत की ओर से जेल प्रेरिताए के चैपलिनों एवं स्वयं सेवकों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हर इंसान सिर्फ इस बात से योग्य है कि ईश्वर ने उससे चाहा, बनाया और प्यार किया है। इसलिए ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जिससे ईश्वर अपनी नजरें हमसे हटा लें। यह एक सुकून देने वाली सच्चाई है जो हर समय हमारे साथ रहती है और हमें याद दिलाती है कि उनका करुणावान प्रेम हमारे अच्छे या बुरे कामों से हमेशा बढ़कर है। पोप ने कहा,
3: Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas.
2: प्यारे भाइयों एवं बहनों, यह बात खासकर आपके लिए है जो अपनों से दूर होने का कष्ट उठाते हैं और अपने मौजूदा हालात की वजह से परेशान हैं। जब आप खुद को नीच महसूस करने लगते और सोचते हैं कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, तो अपनी आंखें उन पर उठाएं जो कई लोगों के माध्यम से आपको अपना प्यार और अपनापन दिखाना कभी नहीं छोड़ते। भले ही आपके जीवन के कुछ पलों में चिंता और उदासी हो, लेकिन याद रखें कि जीवन की गलतियां किसी इंसान की पहचान नहीं बनाती। संत अगस्तीन ने अपने कन्फेशंस में जब अपने जीवन के सफर को बताया तो इस बारे में बात की, अगर हम ईश्वर की कृपा पर भरोसा करते हैं और खुद को उनके द्वारा संचालित होने देते एवं बदलने देते हैं, तो हम अपने जीवन में पाएंगे कि बीता हुआ कल भविष्य को गलत नहीं ठहराता, बल्कि हमें अपने फैसले और चुनाव बदलने का मौका देता है। आगे पोप ने कहा, आइए हम अपने हृदय में प्रभु के लिए जगह बनाएं और उनके चेहरे को खोजें। हम उनके प्यार को हमें रास्ता दिखाने दें। हम उनसे जुड़े रहें जो लगातार हमें आशा की ओर बुलाते हैं और हमें एक शानदार रास्ता दिखाते हैं जिस तक पहुँचने से कोई बाधा हमें नहीं रोक सकती। आज भी वे हमारे अंतकरण की गहराई में हमसे बात करते हैं, हमें यह जानने में मदद करते हैं कि वे हमारे बीच रहते हैं। वे सिर्फ इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम उन्हें एक मौका दें। संत पापा ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, प्यारे मित्रों, मैं आपको ईश्वर का सपना देखते रहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप में से हर एक से मैं कहता हूँ, ईश्वर आपसे वैसा ही प्यार करते हैं जैसे आप हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि आप और भी बेहतर बने। ईश्वर हम सभी को नई शुरुआत करने देते हैं, क्योंकि इंसान एवं ईसाई होने का मतलब कभी गलतियां ना करना नहीं होता, बल्कि बदलने, पछतावा करने, सुधार करने और सबसे बढ़कर मेल मिलाप करने एवं माफ करने की काबिलियत बढ़ाना है। और अंत में संत पापा ने उन्हें करुणा की माता मरियम की मध्यस्थता को सपोर्ट किया और उनके लिए ईश्वर से आशीर्वाद की कामना की। उन्होंने कहा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
3: Que Dios bendiga. Muchas gracias.
0: संत पापा लियो का अगला कार्यक्रम मोंटेसेरात की माता मरियम महागिरजाघर में रोजरी प्रार्थना की अगुवाई करना था। संत पापा कार से मोंटेसेरात की माता मरियम मठ के लिए रवाना हुए। मोंटेसेरात की माता मरियम मठ बार्सिलोना से लगभग 40 किलोमीटर दूर और 720 मीटर की ऊंचाई पर इसी नाम के पहाड़ की ढलानों पर है। भवन निर्माण के हिसाब से मौजूदा मठ अलग अलग सदियों की इमारतों का संग्रह है। सबसे पुरानी इमारतों में 12वीं सदी के रोमन स्क्यू गिरजाघर का पोर्टल, गोथिक मठ और 14वीं एवं 15वीं सदी के मौजूदा गेस्ट हाउस के कुछ हिस्से शामिल हैं। मठ के बगल में मोंटेसेरात की माता मरियम का तीर्थालय है जिसकी शुरुआत मठ से पहले हुई थी। इसकी नींव के बाद से मठवासी हमेशा इसके रखवाले रहे हैं। संत पापा लियो गोल्फ कोर्ट से पापा मोबाइल में रास्ते भर विश्वासियों का अभिवादन और बच्चों को आशीष देते हुए मोंटेसेरात की माता मरियम महागिरजा

कहा, मुझे खुशी है कि मैं मोंटसेरात की माता मरियम के चरणों में आकर उनकी ममता भरी मध्यस्थता पर पूरे भरोसे के साथ अपनी परमाध्यक्षीय प्रेरिताई और एक ऐसी दुनिया में कलीसिया के मिशन को उन्हें सौंप सकता हूं जो न्याय और शांति की मांग कर रही है। इस पवित्र जगह की दीवारें हमें भक्ति, शुक्रगुजार होने और आशा की अनगिनत कहानियां बता सकती हैं जो सदियों से मोंटसेरात की ईश्वर की माता के आसपास फैली हैं। इन दीवारों ने यीशु ख्रिस्त के प्यार के लिए बहाए गए खून की भी गवाही दी है। ये इतने सारे भक्तों के दुख, सुख, खुशी और आंसुओं के रखवाले भी रहे हैं और यूरोप के सबसे पुराने क्वायर स्कूल के बच्चों के क्वायर की प्यारी आवाजें सुनी हैं। संत पापा ने याद किया कि संत पापा फ्रांसिस ने 7 अक्टूबर 2023 में मोंटसेरात की माता मरियम के चरणों में स्वर्ण गुलाब अर्पित किया था और उन्होंने हमें इस बात को सोचने पर आमंत्रित किया था कि कैसे सैकड़ों सालों से बिना किसी भेदभाव श्रद्धालु इस तीर्थ यात्रा में, इस तीर्थालय में रोजरी प्रार्थना करने आते हैं, क्योंकि मरियम ईश्वर की माँ हर ख्रिस्तिया के जीवन का केंद्र है। उसी मौके पर उन्होंने कहा था, माँ के सामने एक व्यक्ति की सबसे अच्छी भावनाएं जागती हैं। संत पापा ने आगे कहा कि असल में माता हमें गहरे बदलाव की ओर ले जाती हैं, जैसा उन्होंने लोयोला के संत इग्नासियस के साथ किया था, जिन्होंने इस यादगार की जगह पर कुंवारी माँ के सामने प्रार्थना में एक रात बिताने के बाद अपने शूरवीरों वाले हथियार नीचे रख दिया। यह एक ऐसा पल था जब उन्होंने यीशु ख्रिस्त की सेवा में एक नए जीवन की शुरुआत की थी। संत पापा ने कहा कि मोंटसेरात की माता मरियम, जो यीशु को एक लाचार बच्चे के रूप में अपनी गोद में संभाले हुए हैं और हमें एक दूसरे से प्यार करने के लिए भी बुला रही हैं, आइए आज हम उनके पैरों पर वह कवच रख दें जिसने धीरे धीरे हमारे दिलों को कठोर बना दिया है। आइए हम अपनी नजरें मरियम पर डालें और उनसे याचना करें कि वे हमें सिर्फ ईश्वर के हथियारों से लैस होने में हमारी मदद करें। आइए हम शांति की महारानी से प्रार्थना करें कि वे हमें दुख देने वाले शब्द, जल्दीबाजी में लिए गए फैसले, आलोचना और गपशप करना छोड़ना सिखाएं। हम अपने परिवारों में, दोस्तों के बीच, काम की जगह पर, सोशल मीडिया पर, राजनीतिक बहसों में और क्रिश्चियन समुदायों में प्यार को संजोना और उसका पालन पोषण करना भी सीखें, ताकि नफरत की जगह आशा और शांति ले सके।

संत पापा लियो 14वें का अगला कार्यक्रम शाम 4:30 बजे धर्म प्रांतीय चैरिटी और सहायता संगठनों के साथ मुलाकात है और 7:30 बजे बार्सिलोना के सगराता फामिलिया महागिरजाघर में पवित्र मिस्सा समारोह का अनुष्ठान करना है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
2: नमस्कार श्रोताओ, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा लियो 14वें के स्पेन की प्रेरिती की यात्रा का संक्षिप्त रिपोर्ट।

0: स्पेन की राजधानी में अंतिम कार्यक्रम में संत पापा लियो 14वें ने मैड्रिड में सुबह उन स्वयंसेवकों से मुलाकात की जिन्होंने दूसरों को संत पापा की यात्रा को सही मायने में जीने में मदद करने के लिए अपना समय दिया। संत पापा ने उनका दिल से शुक्रिया अदा किया। इसके बाद संत पापा लियो 14वें अपनी प्रेरितिक यात्रा के दूसरे पड़ाव बार्सिलोना पहुँचे। हवाई अड्डे से संत पापा कार द्वारा दोपहर की प्रार्थना के लिए बार्सिलोना के पवित्र क्रूस और संत यूलालिया महागिरजाघर पहुँचे। सड़कों पर भीड़ से मिलने के बाद उन्होंने दोपहर की प्रार्थना की। भाषाओं के अपने ज्ञान और प्यार का इस्तेमाल करते हुए संत पापा ने कतालान और स्पानी भाषा में अपना प्रवचन दिया और सभी को दुल्हन और शरीर की छवि पर सोचने के लिए आमंत्रित किया। बार्सिलोना में अपनी पहली शाम को संत पापा लियो 14वें ने लुइस कंपनीज ओलंपिक स्टेडियम में युवाओं से मुलाकात की और तीन गवाही सुनी जिनमें हृदय परिवर्तन, मानसिक स्वास्थ्य, हिंसा और दुख जैसे विषयों पर बातें हुई। फिर संत पापा ने उनमें से हर एक को जवाब देने के लिए समय निकाला।
1: संत पापा लियो ने अपने संदेश में कहा, निकोदेमुस की भांति हम भी रात्रि के यात्री हैं। यह सुसमाचार हमें अपने जीवन की यात्रा के बारे में एक संदेश देता है। हमारी यात्रा, हमारी चाहतें और सब कुछ जो हमारा है और जिनका अनुभव हम रोज दिन करते हैं, हमारी खुशी और पराजय, इच्छाएं और योजनाएं, हमारे जीवन की खोज अभिव्यक्तियां हैं। हम प्रेम के लिए भिक्षु हैं। हम सचमुच इसके भूखे और प्यासे हैं। हम एक गहरे अर्थ की खोज करते हैं जो हमें पोषित, प्रेरित करता और हमें अपने जीवन के रहस्य को समझने में मदद करता है। जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, हर एक छोटे कदम में हम अपने को अपने जीवन की छाया भरी परिस्थिति से संलग्न करने को कहे जाते हैं। हम पूर्ण सत्य की कमी को पाते हैं। हम स्वयं अपने जीवन के रहस्य को पूरी तरह नहीं समझते हैं या दूसरों के लिए अपनी सच्चाई पहचानने को। हम अपने चारों ओर बने रहने वाली छिपी सच्चाई को पहचानने में सफल नहीं होते हैं और वे घटनाएं जो हमारे आंखों के सामने घटती हैं। हम एक ज्योति की खोज करते हैं जो हमारा मार्ग प्रज्वलित करती है। संत पापा ने कहा, लेकिन निकोदेमुस भी हमें विश्वास की राह के बारे में कहते हैं। यह वह पथ नहीं है जो मानवीय जीवन के अस्तित्व के समानांतर चलता हो, बल्कि ये दोनों मार्ग अपने में उलझे हुए हैं। सुसमाचार में जैसा हमने सुना, ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और उसमें वे सदा के लिए हमारे शरीर से जुड़ गए। वे सदैव पिता और हमारे संग हैं। इस भांति हमारे जीवन का रहस्य ज्योति का एक दिन की शुरुआत करती है। जहाँ हम रहते और जो कुछ करते हैं, हम ईश्वर की उपस्थिति और उनके अनंत आलिंगन में रहते हैं। हमारा जीवन ख्रिस्त के संग ईश्वर में गुप्त है। फिर भी कभी कभी हम विश्वास के अंधकार का अनुभव करते हैं, विश्वास की थकान को, आत्मा में थकान को, असफलता के कटुपन को और अपनी मांगों के अनुरूप खरा न उतरने के भय को। संत पापा ने कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, निकोदेमुस हमें इस बात की शिक्षा देते हैं कि ये सभी रातें जो हमारे जीवन में, विश्वास की यात्रा में और हमारे इतिहास में जहां हम निवास करते हैं, एक आशीर्वाद की घड़ी, एक पुनः जन्म लेने, एक गर्भ में प्रवेश करने का पल होता है जो सदैव हमें एक नया जीवन प्रदान करता है। ये रातें हमें नंगा करती और हमें वहां ले आती हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं। वे हमारे मानवीय और धार्मिक मुखौटे जिसे हम दिन में पहनते हैं ताकि कोई हमें ना पहचाने, असलियत से अलग दिखा सके। वे हमें खुले रूप में प्रस्तुत करती हैं जहां हम अपनी ज्योति और अपने छाया को प्रकट करते हैं। ये रातें हम में नम्रता को लाती हैं जिससे हम सच्चाई को अपने में देखते हैं। वे हमें इस सोच से परे ले जाती हैं कि हमारी यात्रा पहले ही पूरी हो चुकी है और हम आगे बढ़ रहे हैं, मानो कि हमें हर चीज, हर कोई और यहाँ तक कि ईश्वर के बारे में भी एक स्पष्ट समझ रखते हैं। एक खालीपन, जो रात के द्वारा उत्पन्न होता है। जब यह दुख या असंतोष, भ्रम या अविश्वास के रूप में होता है, हमारे लिए एक नए जीवन को प्राप्त करने का अवसर होता है, जहां हम परिवर्तन और नवीन होने, ऊपर से पुनः जन्म लेने को कहे जाते हैं, जैसे यीशु निकोदेमुस से कहते हैं। वास्तव में ईश्वर दुनिया के पाप और उसकी बेवफाई की रात का न्याय करने के लिए नहीं आए, बल्कि दुनिया को अनंत जीवन देने हेतु, उसे बचाने हेतु ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। यही कारण है हम सभी रातों को दोष नहीं देने को कहे जाते हैं, ना ही अपने जीवन की रातों को, कलिस्से को, और ना ही हमारे समाज के इर्द गिर्द स्थितियों को। इसके बदले हमें रात में यात्रा करने को कहा जाता है, ईश्वर से निरंतर सवाल करने का और अपने को पवित्र आत्मा के लिए खोलने का, जैसे कि निकोदेमुस ने किया। हम रात का स्वागत करें एक असफलता की निशानी स्वरूप नहीं, लेकिन एक नए जीवन की शुरुआत के रूप में। संत पापा ने कहा कि जैसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन पर चिंतन करते हैं और साथ ही रातों की हमारी यात्रा एक कलिस्से के रूप में और स्पेन के शहरों में, इसकी पुरानी और नई निर्धनता में, इसके समाज और संस्कृति में, हम अपने को पूछ सकते हैं, वे कौन सी रातें हैं जिनसे हम होकर गुजरते हैं, वे हमें क्या कहती हैं, हम कैसे उन पर प्रवेश करते हैं और नम्रता से उन्हें देखते हैं, बिना पूर्व ग्रह के, उस सच्चाई से जैसे कि हम हैं। हम अपने में क्या परिवर्तन करने को बुलाए जाते हैं, हम कहाँ अपनी नवीनता की खोज करते हैं, हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं। यहाँ तक कि रात्रि के हृदय में हमारा खोजना, सवाल करना, ईश्वर से और एक दूसरे से वार्ता करना हम ना छोड़ें। आइए हम उस विश्वास के साथ चलें जो हमारे अलग अलग विचारों और समझ में तालमेल बैठाता है, ताकि हम उस सच्चाई की तलाश कर सकें जो हमें सबकी भलाई की ओर ले जाएगी। इस भांति यह देश सबों का स्वागत करने का एक स्थल बनेगा, जहां हर किसी की मानवता का सम्मान किया जाता और हर किसी को प्रेम किया जाता है, चाहे वह कोई भी हो। हम अपने को पवित्र आत्मा के लिए खोलें, निकोदेमुस की भांति ईश्वर को खोजें और उनके सुसमाचार की ज्योति का स्वागत करें, इस निश्चितता में कि हम अपने अंदर एक नए जीवन का अनुभव करेंगे, एक उपस्थिति जो हमें आशीष से भरती है, एक मुफ्त प्रेम जो हमें अंधकार से ज्योति में प्रवेश करने को मदद करता है, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते कि कोई भी चीज खो जाए, और अभी भी वे हमें अनंत जीवन प्रदान करने की चाह रखते हैं और हमें उस खुशी की ओर अग्रसर करना चाहते हैं जो कभी खत्म नहीं होती है। कुमारी मरियम की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर हमें अपने को खुला होने और पवित्र आत्मा की वायु में झकझोरे जाने की कृपा प्रदान करें।
0: बार्सिलोना में बुधवार को अपने कार्यक्रमों की शुरुआत संत पापा लियो 14वें ने बार्सिलोना में ब्रियेंस जेल के कैदियों और स्वयंसेवकों से मुलाकात करते हुए की। यह जेल 1991 में खोला गया है। शुरू में यह जगह सिर्फ पुरुष कैदियों के लिए थी, लेकिन 1993 में उसी परिसर में महिला कैदियों के लिए एक नया सेंटर खोला गया। संत पापा लियो करीब 10:45 जेल पहुँचे, जहां उनका स्वागत जेल के डायरेक्टर ने किया। वे दोनों सभागार की ओर बढ़े, जहां 3 चैपलिन, कैदियों का एक दल और स्वयंसेवकों का एक दल मौजूद था। जेल निदेशक के स्वागत भाषण, एक चैपलिन और 2 महिला कैदी के साक्ष्य सुनने के बाद संत पापा लियो 14वें ने उन्हें संबोधित किया।
2: प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी के हार्दिक स्वागत के लिए धन्यवाद। मोंटसे और जोसफिना ने जो साक्ष्य हमारे साथ साझा किया, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं फादर जीसस के शब्दों की भी तारीफ करता हूँ जो संत फेलियो डे लोब्रेगेट धर्म प्रांत की ओर से जेल प्रेरिताय के चैपलिनों एवं स्वयं सेवकों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हर इंसान सिर्फ इस बात से योग्य है कि ईश्वर ने उससे चाहा, बनाया और प्यार किया है। इसलिए ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जिससे ईश्वर अपनी नजरें हमसे हटा लें। यह एक सुकून देने वाली सच्चाई है जो हर समय हमारे साथ रहती है और हमें याद दिलाती है कि उनका करुणावान प्रेम हमारे अच्छे या बुरे कामों से हमेशा बढ़कर है। पोप ने कहा,
3: Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas.
2: प्यारे भाइयों एवं बहनों, यह बात खासकर आपके लिए है जो अपनों से दूर होने का कष्ट उठाते हैं और अपने मौजूदा हालात की वजह से परेशान हैं। जब आप खुद को नीच महसूस करने लगते और सोचते हैं कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, तो अपनी आंखें उन पर उठाएं जो कई लोगों के माध्यम से आपको अपना प्यार और अपनापन दिखाना कभी नहीं छोड़ते। भले ही आपके जीवन के कुछ पलों में चिंता और उदासी हो, लेकिन याद रखें कि जीवन की गलतियां किसी इंसान की पहचान नहीं बनाती। संत अगस्तीन ने अपने कन्फेशंस में जब अपने जीवन के सफर को बताया तो इस बारे में बात की, अगर हम ईश्वर की कृपा पर भरोसा करते हैं और खुद को उनके द्वारा संचालित होने देते एवं बदलने देते हैं, तो हम अपने जीवन में पाएंगे कि बीता हुआ कल भविष्य को गलत नहीं ठहराता, बल्कि हमें अपने फैसले और चुनाव बदलने का मौका देता है। आगे पोप ने कहा, आइए हम अपने हृदय में प्रभु के लिए जगह बनाएं और उनके चेहरे को खोजें। हम उनके प्यार को हमें रास्ता दिखाने दें। हम उनसे जुड़े रहें जो लगातार हमें आशा की ओर बुलाते हैं और हमें एक शानदार रास्ता दिखाते हैं जिस तक पहुंचने से कोई बाधा हमें नहीं रोक सकती। आज भी वे हमारे अंतकरण की गहराई में हमसे बात करते हैं, हमें यह जानने में मदद करते हैं कि वे हमारे बीच रहते हैं। वे सिर्फ इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम उन्हें एक मौका दें। संत पापा ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, प्यारे मित्रों, मैं आपको ईश्वर का सपना देखते रहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप में से हर एक से मैं कहता हूँ, ईश्वर आपसे वैसा ही प्यार करते हैं जैसे आप हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि आप और भी बेहतर बने। ईश्वर हम सभी को नई शुरुआत करने देते हैं, क्योंकि इंसान एवं ईसाई होने का मतलब कभी गलतियां ना करना नहीं होता, बल्कि बदलने, पछतावा करने, सुधार करने और सबसे बढ़कर मेल मिलाप करने एवं माफ करने की काबिलियत बढ़ाना है। और अंत में संत पापा ने उन्हें करुणा की माता मरियम की मध्यस्थता को सिपोर्ट किया और उनके लिए ईश्वर से आशीर्वाद की कामना की। उन्होंने कहा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
3: Que os bendiga. Muchas gracias.
0: संत पापा लियो का अगला कार्यक्रम मोंटेसेरात की माता मरियम महागिरजा घर में रोजरी प्रार्थना की अगुवाई करना था। संत पापा कार से मोंटेसेरात की माता मरियम मठ के लिए रवाना हुए। मोंटेसेरात की माता मरियम मठ बार्सिलोना से लगभग 40 किलोमीटर दूर और 720 मीटर की ऊंचाई पर इसी नाम के पहाड़ की ढलानों पर है। भवन निर्माण के हिसाब से मौजूदा मठ अलग अलग सदियों की इमारतों का संग्रह है। सबसे पुरानी इमारतों में 12वीं सदी के रोमन स्क्यू गिरजाघर का पोर्टल, गोथिक मठ और 14वीं एवं 15वीं सदी के मौजूदा गेस्ट हाउस के कुछ हिस्से शामिल हैं। मठ के बगल में मोंटेसेरात की माता मरियम का तीर्थालय है जिसकी शुरुआत मठ से पहले हुई थी। इसकी नींव के बाद से मठवासी हमेशा इसके रखवाले रहे हैं। संत पापा लियो गोल्फ कोर्ट से पापा मोबाइल में रास्ते भर विश्वासियों का अभिवादन और बच्चों को आशीष देते हुए मोंटेसेरात की माता मरियम महागिरजा घर के सामने पहुँचे। प्रवेश द्वार पर संत पापा का स्वागत धर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष जेबियर गोमेज ग्रासियस और मोंटेसेरात मठ के फादर एबोट मानुएल गैश आई उरेयोस ने किया। संत पापा 14वें ने मोंटेसेरात की माता मरियम मठ में महिमा के भेद पर चिंतन करते हुए रोजरी माला प्रार्थना की शुरुआत की।

रोजरी प्रार्थना के बाद संत पापा ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मैं मोंटसेरात की माता मरियम के चरणों में आकर उनकी ममता भरी मध्यस्थता पर पूरे भरोसे के साथ अपनी परमाध्यक्षीय प्रेरिताई और एक ऐसी दुनिया में कलीसिया के मिशन को उन्हें सौंप सकता हूं जो न्याय और शांति की मांग कर रही है। इस पवित्र जगह की दीवारें हमें भक्ति, शुक्रगुजार होने और आशा की अनगिनत कहानियां बता सकती हैं जो सदियों से मोंटसेरात की ईश्वर की माता के आसपास फैली हैं। इन दीवारों ने यीशु ख्रिस्त के प्यार के लिए बहाए गए खून की भी गवाही दी है। ये इतने सारे भक्तों के दुख, सुख, खुशी और आंसुओं के रखवाले भी रहे हैं और यूरोप के सबसे पुराने क्वायर स्कूल के बच्चों के क्वायर की प्यारी आवाजें सुनी हैं। संत पापा ने याद किया कि संत पापा फ्रांसिस ने 7 अक्टूबर 2023 में मोंटसेरात की माता मरियम के चरणों में स्वर्ण गुलाब अर्पित किया था और उन्होंने हमें इस बात को सोचने पर आमंत्रित किया था कि कैसे सैकड़ों सालों से बिना किसी भेदभाव श्रद्धालु इस तीर्थ यात्रा में, इस तीर्थालय में रोजरी प्रार्थना करने आते हैं, क्योंकि मरियम ईश्वर की माँ हर ख्रिस्तीय के जीवन का केंद्र है। उसी मौके पर उन्होंने कहा था, माँ के सामने एक व्यक्ति की सबसे अच्छी भावनाएं जागती हैं। संत पापा ने आगे कहा कि असल में माता हमें गहरे बदलाव की ओर ले जाती हैं, जैसा उन्होंने लोयोला के संत इग्नासियस के साथ किया था, जिन्होंने इस यादगार की जगह पर कुंवारी माँ के सामने प्रार्थना में एक रात बिताने के बाद अपने शूरवीरों वाले हथियार नीचे रख दिया। यह एक ऐसा पल था जब उन्होंने यीशु ख्रिस्त की सेवा में एक नए जीवन की शुरुआत की थी। संत पापा ने कहा कि मोंटसेरात की माता मरियम, जो यीशु को एक लाचार बच्चे के रूप में अपनी गोद में संभाले हुए हैं और हमें एक दूसरे से प्यार करने के लिए भी बुला रही हैं, आइए आज हम उनके पैरों पर वह कवच रख दें जिसने धीरे धीरे हमारे दिलों को कठोर बना दिया है। आइए हम अपनी नजरें मरियम पर डालें और उनसे याचना करें कि वे हमें सिर्फ ईश्वर के हथियारों से लैस होने में हमारी मदद करें। आइए हम शांति की महारानी से प्रार्थना करें कि वे हमें दुख देने वाले शब्द, जल्दीबाजी में लिए गए फैसले, आलोचना और गपशप करना छोड़ना सिखाएं। हम अपने परिवारों में, दोस्तों के बीच, काम की जगह पर, सोशल मीडिया पर, राजनीतिक बहसों में और क्रिश्चिय समुदायों में प्यार को संजोना और उसका पालन पोषण करना भी सीखें, ताकि नफरत की जगह आशा और शांति ले सके।

संत पापालियो 14वें का अगला कार्यक्रम शाम 4:30 बजे धर्म प्रांतीय चैरिटी और सहायता संगठनों के साथ मुलाकात है और 7:30 बजे बार्सिलोना के सगराता फमिलिया महागिरजा घर में पवित्र मिस्सा समारोह का अनुष्ठान करना है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।